www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान सलीम, UCP स्पेस रिसर्च सेंटर के फाउंडर। डॉक्टर साहब, जैसे आपने सारा अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा सारा विजन सेट है, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब देखा जाए तो कोई अब जो हमारे एक स्टूडेंट है, अब हर चीज़ ऑन फील्ड जाने से पहले कुछ ना कुछ हमें नॉलेज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, कोई इस टाइम कोई स्पेस टेक्नोलॉजी कोई कोर्स वगैरह इस टाइम कोई डेवलप है इस टाइम UCP के अंदर?
2: बिल्कुल, हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेमेस्टर में हमने कोर्स ऑफर किया था स्पेस टेक के नाम से, स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम से। और ये मेरे ख्याल है ये कोर्स पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया गया है
1: स्पेस टेक
2: का यूनिवर्सिटीज में।
1: मज़ीद बताइएगा क्या
2: इस कोर्स में बेसिकली क्या करते हैं, स्टूडेंट को A to Z शुरू से लेके बिल्ड करता है वो अपना पूरे का पूरा सेटेलाइट, स्टूडेंट सेटेलाइट जो कैंसेट की मैंने बात की। फर्दर मोर वो उसमें डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट एंटेनास, उसके कम्युनिकेशन को एनहेंस करते हैं और फिर आप स्पेस से डाटा को रिसीव करके उसको प्रोसेस करते हैं कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमने इमेज कैप्चर किया और उसको हमने यूटिलाइज किया। तो इस कोर्स के अंदर आप देखेंगे स्पेस टेक का जो कोर्स है इसके अंदर 3 hours a week हम इसको हैंडल करते हैं यूनिवर्सिटी में, और 3 credit hours का कोर्स है और इसमें सेटेलाइट सबसिस्टम, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, सेटेलाइट ऑर्बिट्स, लिंक बजट्स, एटीट्यूड कंट्रोल, इवन PCB डिजाइनिंग, PCB मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इमेज प्रोसेसिंग, एंटीना डिज़ाइन, सेटेलाइट ग्राउंड स्टेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, इन तमाम चीज़ों को टच किया जाता है।
1: 3 घंटे एक हफ्ते
2: एक हफ्ते
1: तो टोटल कितने हैं?
2: टोटल हमारे पास 16 weeks होते हैं।
1: 16 weeks
2: तो, और उसके एंड पे हमारा एग्जीबिशन हुआ था जिसके अंदर हम सारे स्टूडेंट्स अपना ये कैंसेट का एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी हिट इन UCP एटलीस्ट। और इससे पहले
1: 48 hours का एक पूरा कोर्स
2: है। हाँ जी, तो ये इसके अंदर आप जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को जो टच करते हैं उसमें EZDA, कैडेंस, GNU रेडियो, CST, आपके पास NSYS, HFSS होता है, सॉलिड वर्क्स होता है जो मैकेनिकल डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं, MATLAB कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग के लिए लेटेक्स को हम यूटिलाइज कराते हैं। तो इट इज़ वेरी मच हैंड्स ऑन कोर्स और स्टेम बेस्ड कोर्स है।
1: अच्छा,
2: और इसको इंशाल्लाह ताला हम अभी फ्यूचर में एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कि FOIT और FOST यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी इस कोर्स में आएं और पढ़ें। और सबसे मजे की बात यह है कि इस कोर्स के लिए कोई प्रीरिक्विजिट रिक्वायर्ड नहीं है। एनीवन हु हैज बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ही कैन जॉइन अस और वो आगे अपना उसको आगे हम खुद लेकर चलेंगे, इसको ऐसे डिजाइन किया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप बीच में काफ़ी दफ़ा स्पार्को का जिक्र आया, यानी एक इंडस्ट्री लिंक्ड इंडस्ट्री के साथ आपने अपने स्टूडेंट्स को लिंक किया हुआ है फील्ड वर्क के लिए, इसके अलावा कोई कोलेब्रेशन और लिंकेजेस अवेलेबल हैं UCP के या बाहर के स्टूडेंट्स के लिए जो कि वो फील्ड में जाकर काम कर सकें? इसी
2: बिल्कुल, हमारी जो कोलेब्रेशन है इस वक्त हमारे पास इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों लेवल्स पे हमारी बड़ी अच्छी कोलेब्रेशन डेवलप हो चुकी हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे हम इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ विस्बर के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, मोरक्को में हम असिस्को के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, जापान में हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमारा इनिशियल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, और तुर्की में हम लोगों के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं। उसके अलावा इस सर्कल को हमने एक्सटेंड किया हुआ है नेशनल लेवल पे भी, और नेशनल लेवल पे हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में कॉन्टैक्ट किया डिफरेंट प्रोफेसर्स को और उन्होंने काफ़ी इसको इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और अब वो भी हमारे साथ मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास स्लम्स में डॉक्टर सबी अनवर साहब हैं, उन्होंने हमारी काफ़ी सपोर्ट किया कि जो चीज़ें हमारे पास UCP में अवेलेबल नहीं है तो वो हमें वहाँ पर अलाउ करते हैं और हम जाके लम्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह डॉक्टर हदीद हैं गुलाम इसा खान में, उनके साथ हम इन कॉन्टैक्ट हैं। सजादुर रहमान साहब हैं हमारे पास नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली में, हमारे पास अवैस अहमद खान साहब हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में UET लाहौर में, और इन्होंने फ्लोट सेट की जो हमने मेड इन पाकिस्तान मॉडल बनाया काफ़ी हमारी सपोर्ट की, इनकी हेल्प की वजह से हमने उसको दिया। डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हैं हमारे पास इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर से, और डॉक्टर वकार हैं जो इस वक्त NESTAP में है, नेशनल एरोस्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में।
1: अच्छा,
2: तो हम इस नेटवर्क को भी आसस्ता ग्रो कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में लेके हम इसको काफ़ी आगे तक
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सामीन, जैसा कि डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यकीन करें मैं आपको पहले भी बताया, मैं फिर कहूँगा कि मुझे इस चीज़ के अंदर ना बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था, لیکن آپ کی باتیں سن کے میں اتنا کو موٹیویٹ ہوا ہوں اس ٹائم کہ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں.
2: بالکل,
1: میں ابھی آپ سے ضرور اسپیس ریسرچ سینٹر بھی چکر لگاؤں گا. اور ہمارے سامعین, میں نے تو بہت سیکھا اور ہمارے سامعین بھی یقیناً جو سن رہے تھے, یہ ایک ایسی فیلڈ ہے, یہ بڑی نیرو ڈاؤن ہے اور بہت کم لوگ لیکن جو ہیں وہ بہت انٹرسٹیڈ ہیں. اور یقیناً وہ جیسے میں خود بھی بہت خوش ہوا اور بہت موٹیویٹ ہوں گے, ہمارے سامعین بھی موٹیویٹ ہوئے ہوں گے. لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ ایک وقت تھا جو ہمارا اختتام کو آیا. مجھے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, ہماری پہلی ملاقات تھی, اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید شوز بھی کریں گے اس کے اوپر. سامعین, ہمارے ساتھ مجھے ڈاکٹر محمد کامران سلیم صاحب, فاؤنڈر آف یوسیپی اسپیس ریسرچ سینٹر, اور آپ سن رہے تھے فیکلٹی اور FM 92.6 UCP کی دنیا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ہفتے اسی طرح کسی بہت ہی اچھے ٹاپک کے اوپر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
2: اللہ حافظ.

Number one radio station, FM 92.6, UCP ke duniya.

0: Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.
1: किसी की बस

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: एक नई सोच,
3: नई सोच,
4: एक नई पहचान,
5: पहचान,
2: एक नई लगन,
5: नई लगन।
4: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
4: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
4: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
4: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है यूसीपी की दुनिया।
5: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
4: सुनते रहिए, सुनते

0: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया। नई दुनिया में आप लोगों का खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आजम तारिक, मी विद माय को होस्ट नबील नासिर। नई दुनिया में हम बात करते हैं नई दुनिया में होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में और एडवांसमेंट के बारे में, और साथ ही साथ कुछ सोशल इश्यूज के बारे में भी हम बात करते हैं कि वो कौन से मसाइल हैं जो कि एज अ ह्यूमन हम फेस कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में अगर इसी तरीके से हालात चलते रहे तो हम फेस करेंगे। जी नबील भाई, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह आजम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बदलता मौसम है और यही मेरे ख्याल से मौसम, बदलते मौसम की खूबसूरती होती है। इसी तरीके से पाकिस्तान में और अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा हुआ है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है?
1: बिल्कुल आजम, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को, पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से हमें नवाजा हुआ है। चार सीजन्स हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, रेगिस्तान है, इस तरह की बहुत सारी जो हैं क्वालिटीज हैं। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और फिर भी हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। ये सुनकर जो है ना मुझे कभी कभार बहुत हैरानी होती है।
0: हैरानी वाली तो बहुत सी बातें, मगर हम बात करते हैं माउंटेन्स की। अभी आपने बात की माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स पे और नॉर्थ साइड की ब्यूटी पे तो मेरे ख्याल से अगर लोग कोई किताब लिखना चाहे तो पता नहीं कितनी सी किताबें लिखी जा चुकी हैं अब तक, और बहुत सी किताबें उसकी तारीफ में लिखी जा भी सकती हैं इजीली, क्योंकि वो खूबसूरती का वहाँ पे जो मंजर और जो आलम होता है वो इंसानी दिमाग तसव्वुर नहीं कर सकता जब तक वो उस जगह पे मौजूद ना हो। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, माउंटेन्स की ब्यूटी के बारे में क्या ख्याल है, और जो पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने जो पहाड़ों की शक्ल में, चोटियों की शक्ल में, दरियाओं की शक्ल में, झील्स की शक्ल में और ग्लेशियर्स की शक्ल में जो नेमतें अता की हुई हैं नॉर्थ साइड पे, उसके बारे में क्या आपका क्या ख्याल है?
1: जी आजम, आपने माउंटेन्स की बात की और आपने किताबों की बात की, तो हम सभी बखूबी वाकिफ हैं कि मुस्तनसन हुसैन तारर साहब ने कितनी किताबें लिखी, बेशुमार किताबें लिखी, अपने सफरनामे लिखे और बड़ी खूबसूरती से इन तमाम नॉर्दर्न एरियाज़ को बयान किया। माउंटेन्स की खूबसूरती पे मैं आना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी ना बेसिक लेवल की बात करना चाहता हूँ। आपने माउंटेन्स की बात की, हमने सीजन्स की बात की, मौसमों के बदलने की बात की, झीलों की बात की। मौसमों से हमने, आपने हमेशा एक जुमला सुना है अपने बड़ों को, जब वो पाकिस्तान के बारे में हमें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नियमतों से नवाजा है, देखो हमारे पास चार मौसम हैं, पाकिस्तान के पास, दुनिया के पास दो हैं या तीन हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम इन मौसमों को थोड़ा सा डिस्कस करें और थोड़ा सा एलैबोरेट करें। हमने हमेशा सुना है कि चार मौसम हैं, चार मौसम हैं, लेकिन ये चार मौसम हमें कौन कौन सी नियमतें देते हैं और इनका फ़ायदा क्या है, आखिर ये क्यों इतने अहम हैं चार मौसम? देखें, चार मौसमों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप घरों में बैठे हुए, अपनी बालकनीज में बैठे हुए चार मौसमों को एंजॉय कर सकते हैं। इसका मतलब है कि चार मौसमों से जो आने वाली डाइवर्सिटीज़ हैं, चार मौसमों से जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमेशा उनका जिक्र हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम चार मौसमों की बात करें तो सर्दी में सर्दियों के कपड़े, सर्दियों के खेल, गर्मियों में गर्मियों के कपड़े, गर्मियों के खेल, बहार, खिजां। तो ये जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, मुझे लगता है कि लोगों को और हमें भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में किस कदर पोटेंशियल है और कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें सरजमीन अता की है, जिसमें पहाड़ हैं, है, तमाम चीज़ें हैं। अब मौसमों की बात की तो मैं आपको बताता चलूं कि आपने माउंटेन्स की बात की, यकीनन जो जो लोग गए हुए हैं और हम जब भी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो मेरे ख्याल से हमें इस पर बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो किस कदर पुरकैफ लम्हात होते हैं और किस कदर खूबसूरत मौसम होते हैं, वो झीलें, वो बादल और वो तमाम चीज़ें। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि हमारे रेगिस्तान, हमारे समंदर और बलोचिस्तान में मौजूद जितनी भी खूबसूरती है, ये बहुत अंडररेटेड है और दुनिया तो इन चीज़ों के लिए तरसती है जो कि हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि इससे हमारे मुल्क की डाइवर्सिटी का पता लगता है और हमें पता लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है, कितने तरह के टूरिस्ट आ सकते हैं, वो बेशुमार टूरिस्ट हैं जिन्होंने बाईसाइकिल पर, मोटरसाइकिल पर पूरा पूरा मुल्क फिरा है। तो उससे हमें थोड़ा सा ये भी आइडिया होता है कि माउंटेन्स के अलावा रेगिस्तान, हमारे जो थर के एरियाज हैं, हमारा जो बलोचिस्तान की खूबसूरती है किस कदर खूबसूरत है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है?
0: जी बिल्कुल नबील भाई, हम अपनी खूबसूरती को और जो नेमतें हमें अल्लाह पाक ने अता की हुई है उसको हम किसी एक चीज़ पे स्पेसिफिक नहीं कर सकते। जिस तरीके से आपने बात की, कुछ रेगिस्तान भी ऐसे हैं, बलोचिस्तान के कुछ इलाके हैं जहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पे जहाँ पे रेगिस्तान है तो वहाँ पे उसी के मुताबिक स्पोर्ट्स भी होती होंगी। और यही मेरे ख्याल से इंसान की ज़िंदगी की और इस दुनिया की खूबसूरती है कि जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है, फिर वो चाहे डाइवर्सिटी स्पोर्ट्स में हो, फिर वो चाहे डाइवर्सिटी इंसान انسان کے بیہیویئر میں کیوں نہ ہو, یہی انسان کو ایک یونیک بناتی ہے. اور جس طریقے کے ڈفرنٹ کھیلز ہر موسم میں, آپ نے بتایا کہ ہر موسم میں اس کے مطابق کا کھیل کھیلا جاتا ہے. اب جس نے آپ نے لاسٹ بات کی ریگستان کی, تو ریگستان میں ریلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلی جو ہوتا ہے, جو ریلی کیمپینز ہوتی ہیں, جو کہ گاڑی اور جیپس کی جو ایک پوری ریلی ہوتی ہے, اس کی ایک اسپورٹس کھیلا جاتا ہے, اور جو بہت دنیا بھر سے بہت سے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرتا جاؤں گا, آپ نے ٹوریزم کی بات کی کہ ہمارے لوگوں کو, ہمارے لیے شاید یہ چیزیں انڈر ریٹڈ ہیں, مگر بہت سے جو باہر کے جو فورن کنٹری سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. وہ اسپیشلی باہر سے آتے ہیں ایک چھٹیوں پہ پورا بنا کے اپنا پلان, اور یہاں پہ آ کے یہاں کے ڈفرنٹ اسپورٹس میں حصہ لیتے ہیں. جس طرح کہ ماؤنٹیننگ ہم دیکھیں, یہاں بہت بڑا اسپورٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ہر سال دنیا کے بہت سے بڑے بڑے اچھے سے اچھے کلائمبرز آتے ہیں یہاں پہ, اور آ کے یہاں کے جو چوٹیاں ہیں ان کو سر کرتے ہیں. چوٹیوں کی بات کی تو مجھے بتائیے کہ پاکستان میں چوٹیوں میں کون کون سی نعمت موجود ہے اس ٹائم پہ, اور کتنی چوٹیاں ہمارے پاس موجود ہیں؟
1: بالکل اعظم, آپ نے اسپورٹس کی بات کی اور پھر ماؤنٹینس کی بات کی, تو ڈائیورسٹی میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ ہمارے پاس تمام پلے گراؤنڈز ہیں. اگر ہم واٹر اسپورٹس کی بات کریں تو ہمارے پاس سمندر, جھیلیں, ڈیمز موجود ہیں. اگر ہم ریگستان کی بات کریں تو ہم وہاں پہ جیپ ریلی اور وہاں پہ جتنی بھی اسپورٹس ہو سکتی ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک, اگر ہم عام انسان کی زبان میں یہ بات کریں تو پلے گراؤنڈز ہیں. جیسے آپ نے ماؤنٹیننگ کی بات کی, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے پاس 5 سے 6-8 ہزار میٹر سے بلند چوٹیاں ہیں. اس کے علاوہ 7 ہزار سے بلند چوٹیاں تقریباً 108 ہیں. ان 108 چوٹیوں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماؤنٹینئرز جو یہاں پہ لوکل ہیں اور جو باہر سے آنے والے ہیں, ان کے پاس 108 چوٹیاں یعنی 108 پلے گراؤنڈ موجود ہیں, جہاں پر وہ اپنے, اگر میں عام زبان میں کہوں تو وہ پریکٹس میچ کر سکتے ہیں, وہ اپنی تیاری کر سکتے ہیں ان بلند چوٹیوں کی جو دنیا میں موجود ہیں, جس میں پاکستان کی بھی وہ 8 ہزار سے بلند چوٹیاں موجود ہیں.
0: جی بالکل نبیل بھائی, اور یہی میرے خیال سے چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی یونیکنس میں اور اضافہ کرتی ہیں. مگر جہاں پہ ہم یونیکنس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں, اور وہاں پہ کچھ مسائل بھی چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ, جن کا ہمیں ایز اے ہیومن اور ایز اے ایک انڈیویجول رہ کے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کو حل کرنا چاہیے. کچھ ایشوز ہیں جن پہ بات ہم کرنا چاہیں گے اور جن کی اویئرنیس کرنا میرے خیال سے یہ ہماری ذمہ داری ہے, آپ کی, میری اور ہمارے ہر آس پاس لوگوں کی, کہ اس کی اویئرنیس بھی کریں اور اس پہ ساتھ بائی ساتھ کنٹریبیوشن بھی کریں. مگر ہم اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. تب تک کے لیے آپ سنتے رہیے FM 92.6

0: वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई दुनिया। ब्रेक से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने नेमतों का जिक्र किया और हमने पाकिस्तान के पोटेंशियल का जिक्र किया, लेकिन हम फिर भी इतना पीछे क्यों हैं और हम इसको मुकम्मल तौर पर कैश क्यों नहीं करा सके। आपने पोल्यूशन का जिक्र किया, आपने उन मसाइल का जिक्र किया, तो मेरे ख्याल से पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मसला है। अगर हम नॉइस पोल्यूशन की बात करें, एयर पोल्यूशन की बात करें, एयर क्वालिटी के इंडेक्स की बात करें और ये तमाम मसाइल, तो लोग गंद फेंकते हैं और पानी का मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो अगर हम माउंटेनियरिंग की बात करें और क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की बात करें, तो हमारे जहन में कुछ नाम आते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं जो कि सिर्फ कौमी मसला नहीं है, बैनुल अक्वामी मसला है और हर जगह इस पर बात होती है, लेकिन हमें इसमें इतना अमल नज़र नहीं आता। हम सुनते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, और ये वो इश्यूज हैं जो सिर्फ पाकिस्तान को फेस करने को नहीं मिल रहे, पूरी दुनिया को फेस करने को मिल रहे हैं। आज़म, हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये ग्लोबल वार्मिंग और ये तमाम चीज़ें ये क्या हैं।
1: अच्छा नबील भाई, सबसे पहली बात कि ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए और क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्रीन हाउस को समझना बड़ा ज़रूरी है। असल में ग्रीन हाउस होता क्या है? जिस तरीके से आपने देखा होगा, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ पौधे होते हैं और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए जो गर्मी का जो टेम्परेचर होता है ना, उनको ज़्यादा चाहिए होता है। उसके लिए जो वहाँ का जो किसान होते हैं, जो वहाँ के उनके जो देखभाल कर रहे होते हैं, उनके लिए एक उन स्पेसिफिक पौधों के लिए एक शीट या तो एक शीशे की जो होती है ना, एक सरफेस ही बना के उनके ऊपर रख देते हैं। जब धूप की जो किरणें, धूप की जो शुआएं जब उसके अंदर आती हैं, उसको क्रॉस करके, उस शीट को जब क्रॉस करके अंदर आती हैं, जब उनके पौधों में पड़ती हैं, जब जैसे ही वो पौधों में पड़ती हैं तो उनकी जो रोशनी होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, बाहर को जाती है। जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे शीट जो उसको ब्लॉक करने के लिए कुछ भी चीज़ लगाई होती है, शीशे की या तो प्लास्टिक की, वो उससे रिफ्लेक्ट होकर दोबारा उसी जगह के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से होता ये है बार बार उस सन की जो रेजेज हैं रिफ्लेक्ट होने की वजह से जो उसकी अंदर का जो टेम्परेचर होता है, जो एक ग्रीन हाउस जो का टेम्परेचर होता है, वो गर्म हो जाता है। इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस। अब ये हमारे मुल्क में किस तरीके से काम करती है और वर्ल्ड में किस तरीके से काम करती है और सरफेस पे किस तरीके से काम करती है, ज़मीन पे किस तरीके से काम करती है, उसका बेसिक आप समझने के लिए कि जिस तरीके से सन की जो किरणें हैं जब वो हमारी ज़मीन पे आगे पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती हैं, जब वो रिफ्लेक्ट करती हैं तो हमारे ज़मीन की सरफेस से ऊपर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की एक लेयर बन चुकी है। अब वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की लेयर बनती कैसे है? वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की लेयर बनती है जो एक अननेसेसरी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेज जब सरफेस में ऊपर आती हैं, जब हवा में ऊपर आती हैं, उसकी वजह से वो सरफेस बन जाती है ऊपर, जिसकी वजह से वो ज़मीन में जो पड़ने वाली शुआएं जब वापस जाने की कोशिश करती हैं तो उनको वो रोकती हैं। जब वो नहीं वापस जा पाती तो इस वजह से जो वहाँ की टेम्परेचर होता है वो मज़ीद गर्म से गर्म होता जाता है, और यही वजह बनती है क्लाइमेट चेंज जैसे मसलों की, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसलों की, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें ये मसला फेस करने को मिल रहा है। अब ये लेयर बनती किस वजह से है, उसकी कुछ रीजंस हैं। इंडस्ट्री का धुआं है, हम जो फोसल को जलाते हैं उनका धुआं है, जो गाड़ियों में हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं, जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, जब उनमें से धुआं निकलता है, वो जो धुआं हवा में जाता है उसकी वजह से वो सब चीज़ें बनती हैं। जब हम एग्रीकल्चर फसलों को जब हम जलाते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है, जब हम कूड़े को गार्बेज को जब हम जलाते हैं जो उसमें से धुआं निकलता है, ये सारी गैसेस मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेस मिलके जब सरफेस में और जब ऊपर जाती हैं, हवा में जब जाती हैं, तो वो एक लेयर बना देती हैं जिसकी वजह से सन की जो रेजेस होती हैं वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसले बनते हैं। अब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की जहाँ तक बात की है, ये तो बहुत एक संगीन मसले हैं और जिसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको फेस कर रहे हैं। नबील भाई, मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, और अगर हमने आज इस पर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले वक्तों में इससे क्या सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी?
0: बिल्कुल आज़म, अगर हम ग्रीन हाउस की बात करें और ग्लोबल वार्मिंग की बात करें और क्लाइमेट चेंज की बात ना करें तो ये मेरे ख्याल से इंसाफ नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो इन तमाम जो भी आपने रीजंस बताई हैं, जो भी आपने मसाइल बताए हैं, इन तमाम रीजंस की वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ना सिर्फ पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में हम देख रहे हैं कि इसका रुझान ज़्यादा है, इसका नुकसान जो है हमें फ़ेस करने को ज़्यादा मिल रहा है। इसकी मिसाल अगर हम सादा अल्फाज में बात करें तो लाहौर में स्मॉग, कराची के अंदर हीट स्ट्रोक्स, उसके अलावा पानी का मसला, तो ये तमाम चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से आती हैं। अब हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि ये इतना संगीन मसला है कैसे और हमें इससे क्या प्रॉब्लम है, इंडिविजुअली एज अ सोसाइटी हमें क्या मसला आ रहा है। देखें, क्लाइमेट चेंज से बिल्कुल अगर हम सादा और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बात करें तो जो एक प्रोमिनेंट चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि गर्मियों का टाइम स्पैम बढ़ता जा रहा है, गर्मियों की मुद्दत बढ़ती जा रही है और सर्दियों की मुद्दत कम होती जा रही है। अब नॉर्दर्न एरियाज़ में होता क्या है कि हमें जो हमारा पाकिस्तान में जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली ग्लेशियर्स और बारिशों से आ रहा होता है, बारिशों के पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं, ग्लेशियर्स में आने वाला पानी उसकी उसमें कमी आ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और सर्दियों में बर्फबारी कम होने की वजह से, और सर्दियां जो तकरीबन 3 से 4 माह नॉर्दर्न एरियाज में रहती हैं और बर्फबारी होती है और वहां पर ग्लेशियर्स पर बर्फ इकट्ठी होती है, वो होना बंद हो चुकी है। अब वो 2 महीने 1.5 महीने 2.5 महीने तक होती है। अब ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलते जा रहे हैं और ग्लेशियर्स का पानी दरियाओं में हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो एक ग्लेशियर्स का ज़खीरा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। अब पूरी दुनिया में जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उसमें से कुछ पानी तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा पानी जिसको हम संभाल ना सके, जिसको डैम्स ना होने की वजह से जिसपे हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, अब वो पानी समंदर में चला जाता है और समंदर की सतह जो है वो बढ़ती जा रही है। अब गर्मियों की अगर हम बात करें तो हीट स्ट्रोक्स का सामना है, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग रही है, टर्की के जंगल में हमने देखा कि आग लगी और उसके वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो रहा है, और ये तमाम नुकसानात। अब होता क्या है कि ये जो जिन गैसेस की आपने बात की है ये ग्रीन हाउस बताती हैं और साथ ही साथ समंदरों को भी नुकसान करती हैं। पानी जो है वो एसिडिक हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे जो सी क्रिएचर्स हैं उनको मसाइल दरपेश होते हैं। उसके अलावा वो पानी जो है वो बहुत ख़तरनाक बनता जा रहा है हमारे लिए। इसके अलावा ओशंस की अगर हम बात करें तो ओशंस से जो पानी है वहाँ पर जो सी ब्रीज चलती हैं और जो बारिशें होती हैं, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बहुत संगीन हद तक बढ़ती जा रही हैं। और अगर हमने अपने इन गैस की इमिशंस को कंट्रोल ना किया, इन जहरीली गैसेस के इनखला को कंट्रोल ना किया, तो ये बहुत बड़ा मसला है। जी आज़म
1: जी, बिल्कुल नबील भाई, जिस तरह से आपने बात बताई ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो सी सरफेस लेवल पे जो शहर हैं, जो आइलैंड्स हैं, आने वाले वक्तों में अगर हालात इसी तरीके से रहे, जिस तरह मालदीव्स देखा जाता है बहुत ही खूबसूरत टूरिज्म प्लेस है, ये सब जगहें समुद्र की सतह के नीचे चली जाएंगी, इनके ऊपर सारा पानी आ जाएगा जिस तरीके का हालात इसी तरीके से रहे। तो जहां पे मसले होते हैं वहां पे हमें ये भी देखना चाहिए कि वहां पे उन मसलों का हल किस तरीके से किया जा रहा होता है, गवर्नमेंट लेवल पर उनका किस तरीके से काम किया जाता है, और एज ए इंडिविजुअल हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। हम बात करेंगे गवर्नमेंट लेवल की, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं किस तरीके से इस ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज के इशू को कंट्रोल करने के लिए, हम उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सुनते रहिए यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप सुन रहे हैं नई दुनिया। ब्रेक से पहले हमने बात की पोल्यूशन के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, और बात की कि अगर तो मसले इसी तरीके से चलते रहे, चीजें इसी तरीके से चलती रही, हालात इसी तरीके से होते रहे, तो आने वाले वक्तों में ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें बहुत से नुकसान उठाने को मिलेंगे। मगर जहां तक बात की जाती है मसलों की, तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव भी साथ ही साथ हो रहे होते हैं उन मसलों को ठीक करने के लिए। तो जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव कुछ लिए हैं, कुछ क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के नाम से कुछ एक इनिशिएटिव्स एक लॉन्च किया है, जहां पे कुछ तीन उनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन पे उन्होंने काम करना है इस मसले को हल करने के लिए। नबील भाई, मुझे बताइएगा वो कौन से ऐसे तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन पे काम करके हुकूमत पाकिस्तान को लगता है कि ये इस मसले का हल कर सकती हैं। ये
1: जी आजम, जब भी हम मसाइल की बात करते हैं तो उनके हल जानना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता हो कि हमने उन मसाइल को काउंटर किस तरह करना है। पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जिसको हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, पोल्यूशन की वजह से आने वाले मसाइल में, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान दरपेश है, जबकि उनकी कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत कम है। आपने बात की कि इनके हल क्या हैं, आपने बात की कि हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, और वाकई हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमने देखा कि इससे पहले जब सूबाई गवर्नमेंट थी तब भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, लेकिन हम मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें और हुकूमत पाकिस्तान के इनिशिएटिव्स की बात करें, तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट में तीन डिविजन्स हैं, तीन सतहों पर काम हो रहा है, और मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि कहाँ कहाँ काम हो रहा है। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानी ये जानते हैं कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव चल रही है। पाकिस्तान ने केपीके में 1 बिलियन दरख्त लगाए हैं, और अब पाकिस्तान का 10 बिलियन दरख्त लगाने का टारगेट है, और ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इतने कलीदी एक किरदार अदा कर रहा है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी पाकिस्तान को बहुत सराहा जा रहा है, और पाकिस्तान जो है वो फ्रंट पर रह के इन्वायरमेंटल इशूज़ पर लीड कर रहा है। तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, हम देख रहे हैं कि अभी भी ये चल रहा है और ये रवा दवा है। ट्री प्लांटेशन ड्राइव में 10 बिलियन ट्रीज लगाने थे, और हमने देखा कि ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर नहीं चल रहा, इसको एक आम इंसान के लिए, एक आम इंडिविजुअल पाकिस्तानी को भी पूरा इख्तियार दिया गया है कि वो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है इसमें करे। हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ चौराहों में पौधे प्रोवाइड किए गए, ऐसे दरख्त प्रोवाइड किए गए और जहाँ पर हम ट्रीज़ लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्ब क्लाइमेट चेंज के नाम से एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो मसाइल आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है, प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव के नाम से। इसमें क्या है कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में टूरिज़म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, ताकि हमारी आमदन बढ़े और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स जो हैं वो बेहतर हों। तो टूरिज़्म को बेहतर करने के लिए हमारी वाइल्ड लाइफ और हमारे जंगलात जो हैं उनको बेहतर करना और उधर फैसिलिटेट करना और जंगलों को घना करना, ताकि वहाँ पर जानवरों की तादाद बढ़े और जो जानवर एक्सटिंक्ट होने के करीब हैं उनको प्रिजर्व करना, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें वो तमाम इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जंगलों को घना किया जा रहा है, वहाँ पर दरख्त लगाए जा रहे हैं और वो तमाम चीज़ें। इसके अलावा रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें डैम्स बनाए जा रहे हैं और पानी के ज़खायर बढ़ाए जा रहे हैं। जिन जगहों पर पानी के ज़खायर मौजूद हैं उनको प्रिजर्व किस तरह करना है, उनको संभालना किस तरह है, उनको यूटिलाइज किस तरह करना है, उसके हवाले से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो बहुत कलीदी किरदार अदा कर रही है, जबकि देखा जाए तो बींग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमारी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है बनिस्बत यूरोपियन कंट्रीज या वो कंट्रीज जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिनको हम कहते हैं। जी आजम
0: जी, बिल्कुल नबील भाई, इस तरीके से आपने पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, जिस तरीके पर वो काम करना चाह रहे हैं, हमें लगता भी है कि अगर हम इसी तरीके से काम करते रहें तो आगे जाके हम एज अ कंट्री हम कुछ अच्छी चीज़ों का फेस कर सकते हैं और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता चाहूँ, मैंने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जो कि मोस्टली गाड़ियों के धुओं में से निकलती है। जब आप किसी भी फ्यूल को जब जलाते हो, जब आप किसी फॉसिल्स को जब जलाते हो, तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो जब एयर में जाता है तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान का बायस बनता है। इसकी वजह से हेल्थ इशू भी हमें बहुत से देखने को मिलते हैं। तो गाड़ियों का मसला एक बहुत मेजर मसला था। इसी के साथ साथ रहते हुए, इसी मसले को देखते हुए, एक नई इनिशिएटिव को भी क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के मिशन में ही लॉन्च किया जा रहा है, ई टैक्सी के नाम से। ई टैक्सी में होगा ये कि इलेक्ट्रिकल व्हीसल एक टैक्सी है जो के इस्तेमाल की जाएगी, इसकी सर्विस इस्तेमाल की जाएगी। हम देखते हैं कि जब हम नॉर्थ साइड पर जाते हैं, इस्लामाबाद से जब हम नथिया गली की तरफ जाते हैं, मदी की तरफ जाते हैं, जितने भी सारे नॉर्थ के एरियाज हम जितने विजिट करते हैं, तो हम वहाँ पर लोकल अक्सर हमने देखो अगर टैक्सी पर सफ़र करते हैं, अब वहाँ की लोकल टैक्सी की जितनी भी हालत होती है ना, वो बहुत ही समझ लें कि ख़राब हालत होती है। बैठने की भी हालत सही तरीके से नहीं होती वहाँ पर, उनके इंजन ख़राब हो चुके होते हैं क्योंकि वो बहुत पुराने मॉडल की गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। उसमें जो धुआं निकलता है, वो धुआं वहाँ पर जो लोगों के लिए हैं, जो टूरिस्ट हैं जो आते हैं वहाँ पर, जो लोग सैर करने आते हैं, तफरी करने आते हैं, उनके नुकसान का भी बहुत बायस बनता है। तो इसी वजह से इसी सब मसलों को देखते हुए वहाँ पर एक टैक्सी लॉन्च की जा रही है जो कि इस्लामाबाद से नथिया गली तक अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेगी। 20-50 किलोमीटर ईजिली ये एक चार्ज में सफ़र कर सकती है, और वहाँ पर ही इस्लामाबाद के अंदर ही यहाँ आपके डिफरेंट इसके इलेक्ट्रिकल स्टेशन जो होते हैं, इनको चार्ज करने के जो स्टेशन होते हैं, वो भी 1-2 लॉन्च कर दिए जाएंगे जैसे ही ये इसकी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो, जब जैसे ही यहाँ पे आएगी। जी नबील भाई
1: जी, आज़म हमें बताइएगा, इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी एक आम गाड़ी की नस्बत इन्वायरमेंट को कैसे फ़ायदा दे रही है?
0: इस तरीके से फ़ायदा दे रही है कि जिस तरह आम गाड़ी है वो पेट्रोल से चलती है, उसमें फ्यूल डलेगा, वो जब फ्यूल डलेगा तो वो फ्यूल ऑब्वियसली बात है वो फ्यूल बर्न होता है, जैसे वो फ्यूल बर्न होता है कुछ गाड़ियों की इंजन होते हैं उनकी हालत खस्ता हो जाती है वक्त के साथ साथ, मजीद क्योंकि सारा सफ़र चढ़ाइयों का सफ़र होता है तो वो ज़्यादा जान लेता है, तो इंजन आम गाड़ियों के बनस्पत ज़्यादा जल्दी वहाँ का इंजन ख़राब हो जाता है गाड़ियों का। जैसे इंजन ख़राब होता है तो वो गाड़ियों में से धुआं निकलता है, जो कि धुआं जब निकलता है तो वो हवा में जब जाता है तो वो बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है, और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे शदीद संगीन मसले में भी अपना रोल अदा करता है वही धुआं। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक कार होगी उसमें धुआं नहीं डलेगा, उसमें पेट्रोल नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक गाड़ी आप चार्ज करोगे, इजीली आप चार्ज करोगे, वो कुछ आवर्स लेती है चार्ज होने में, जैसे ही वो चार्ज हो जाएगी तो वो इजीली 250 किलोमीटर का सफ़र ईजिली तय कर लेगी। तो उसमें होगा ये कि कोई फ्यूल नहीं सड़ेगा, कोई भी ऐसा धुआं नहीं निकलेगा, कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा, तो उसमें धुआं कोई इस्तेमाल नहीं होगा, तो वह सिर्फ ईजिली बिजली की मदद से आप समझ लें कि वो ईजिली चली जाएगी वहाँ पर, जहाँ पे आप जाना चाहोगे, अपनी उसकी सर्विस का इस्तेमाल करना चाहोगे।
1: ठीक आज़म, आपने बताया कि ई टैक्सी का, और मुझे लगता है कि ई टैक्सी का बहुत सारा फ़ायदा है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और हम इंशाल्लाह देखेंगे कि आने वाले वक्तों में इलेक्ट्रॉनिक कार्स का जो है वो एक दौर हमें देखने को मिलेगा और इसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट होगा। अगर हम देखें तो पाकिस्तान ग्लोबली देखें या इंटरनेशनली देखें तो इस पर इसको बहुत इग्नोर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान ने लोकल सतह पर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिनमें से कुछ का हमने मुख्तसरन जिक्र भी किया। तो मेरे ख्याल से सामीन का, आपका आज़म और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डाल सकें और अपने इन्वायरमेंट को जिस कदर बेहतर कर सकते हैं बेहतर कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक से जो भी हमने चीज़ें जिक्र किया, जिन चीज़ों का और जिन रीज़न्स को एक्सप्लेन किया और इनके मसाइल के हल बताए, इससे हमें फ़ायदा होगा और इनको आप भी इस्तेमाल करेंगे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करके, फसलों को ना जला के, और ये तमाम चीज़ें, इससे हम बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे और पाकिस्तान को एक आगे फलता फुलता देखेंगे। जी ये था आज का प्रोग्राम, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज FM 92.6 UCP की दुनिया पर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dil mein.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल, तालिबे इल्म।

0: मेरोपेनम, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो प्रिस्क्रिप्शन को देखेगा, उसको कितने दिन की चाहिए वो उसको चार्ज कर देगा, पैक करके दे देगा। लेकिन अगर यहाँ भी अगर हो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो वो देखेगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी इंडिकेशन है कि नहीं है, उसकी लैब वैल्यूज क्या हैं, क्या उसकी डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। तो वो एक ज़रा थॉरो इसको देखेगा, एक डिटेल्ड इसका रिव्यू करेगा। तो ये फ़र्क होता है हॉस्पिटल में और कम्युनिटी में।
1: ओके, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बुनियादी जिम्मेदारियां होती क्या हैं?
0: सर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का स्कोप काफ़ी वास्ट है। आप ये देखें कि हस्पताल के अंदर मेडिसिन ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट, एक MMU प्रोग्राम होता है, मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड यूज, उसको ये हेड कर रहे होते हैं। और उस प्रोग्राम के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस प्रोग्राम, अगर हम कहें, हम ड्रग्स को सिलेक्ट करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, स्टोर करते हैं, ऑर्डर करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं, डिस्पेंस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं और फिर मॉनिटर करते हैं।
1: Okay.
0: तो शुरू से लेके एंड तक आप ड्रग्स का कहीं भी देख लें, वहाँ पे हमारा रोल होता है।
1: मतलब ये सारे काम आपने जो बताए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है
0: जी सर,
1: उसको सिलेक्शन भी करता है, प्रोक्योर भी करता है, स्टोरेज भी करता है
0: जी।
1: और एंड में आपने बताया कि आफ्टर दी एडमिनिस्ट्रेशन वो मॉनिटर भी करता है, ये सारे काम फार्मासिस्ट कर रहा होता है।
0: हाँ जी सर, फार्मासिस्ट और उसके साथ फार्मेसी टेक्नीशियंस भी होते हैं, नर्सिंग भी होते हैं, हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप होता है हॉस्पिटल, हम सारे मिलकर काम करते हैं।
1: ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हॉस्पिटल जो फार्मासिस्ट है वो डॉक्टर्स के साथ मिलके भी काम करता है।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल सर ऐसे ही होता है। वो डॉक्टर्स के साथ और नर्सेज के साथ, जैसे मैंने बताया कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन के लोग होते हैं, उसके अंदर नर्स भी होती है, उसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, उसके अंदर स्पीच थेरेपिस्ट भी होता है, उसके अंदर आपका न्यूट्रिशनिस्ट भी होता है, रेस्पिरेटरी टेक्नीशियंस भी होते हैं और फार्मासिस्ट भी होता है, डॉक्टर्स नर्स सब, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं उस टीम के अंदर।
1: ओके, आपने अभी पीछे जो मैंने आपसे बात की थी कि बुनियादी जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी होती हैं, उसमें आपने बात की थी कि डिस्पेंसिंग एंड प्रेपरेशन की भी बात की थी, तो क्या आप इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं कि क्या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट दवाइयों की तैयारी भी करता है?
0: जी सर बिल्कुल, दवाइयों की तैयारी भी करते हैं हम। अब जैसे हमारे पास आते हैं एंटीबायोटिक्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर हमने कोई TPN बनाने होते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो लोग मुंह से खुराक नहीं ले सकते उनके लिए IV होते हैं न्यूट्रिशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फार्मासिस्ट फार्मेसी में बनाते हैं, उसे कहते हैं एसेप्टिक एरिया, जहाँ पर चीज़ें बनती हैं। तो जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब यस है, हम बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं।
1: ये TPN स्टैंड फॉर
0: टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन,
1: इसका क्या काम है?
0: सर, जो लोग मुंह के जरिए खाना या खुराक नहीं ले सकते, ठीक है, मैल नरिश्ड होते हैं और उनको हमने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी होती है, तो हम IV के थ्रू यानी कि इंजेक्शन के थ्रू उनको खुराक पहुंचाते हैं। इसके अंदर हम पेशेंट की तमाम डेली कैलोरीज काउंट करके उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स, लिपिड्स, शुगर्स और मल्टी वाइटामिन और दीगर चीज़ें उसमें मिलाते हैं, और एक आप कह लें बैग के अंदर, एक ड्रिप के अंदर हम खुराक बना के उसको IV लगा देते हैं, ताकि okay. उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी होती रहे विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द माउथ।
1: गुड, डॉक्टर साहब एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की तैयारी किस तरह से करते हैं?
0: सर, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो होते हैं ना, इनके लिए हम स्पेशल हुड्स यूज करते हैं। एक तो वो होते हैं,
1: नहीं ये पहले तो ये बताएं कि ये किस काम आते हैं।
0: अच्छा सॉरी सर, जिनको नहीं पता कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स क्या होते हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स होते हैं, जैसे नाम से कीमो होते हैं कैंसर के लिए, तो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स वो होते हैं जो हम कैंसर के इलाज के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं कीमोथेरेपी।
1: सही।
0: और कीमोथेरेपी बनाने का एक खास प्रोटोकॉल होता है, इनको हम स्टेराइल एरिया में बनाते हैं, एसेप्टिक एरिया, जैसे मैंने पहले बताया था, उसके अंदर एक मशीन होती है जिसे कहते हैं लेमिनार फ्लो हुड। वो आप ऐसा समझ लें कि एक कमरा होता है जिसमें फिल्टर्ड हवा आ रही होती है और फिल्टर्ड हवा वहाँ से निकल रही है, उसके अंदर कोई जरासीम नहीं होते और वहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर सब कुछ कंट्रोल्ड होता है। और फार्मासिस्ट भी जो जाता है वहाँ पे, वो गाउन, ग्लव, गॉगल्स, मास्क, कैप, फुटवेयर सब कुछ पहन के जाता है, और क्योंकि कीमो के मरीज जो होते हैं वो ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनकी कुव्वत मुदाफियत बहुत कम होती है, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो उनकी दवाइयाँ बना रहे हैं वो फ्री ऑफ जर्म या फ्री ऑफ एनी कंटेमिनेशन हो।
1: ओके, डॉक्टर साहब मैं अभी तक वहीं पे प्रेपरेशन के ऊपर ही फंसा हुआ हूँ, उसी से रिलेटेड आपसे मैं सवाल करता रहूँगा, तो अभी हम थोड़ी सी ब्रेक के बाद जाते हैं, उसके बाद फिर इसी प्रिपरेशन से ही आपसे के बारे में अगला सवाल आपसे पूछूंगा कि किस तरह से खुराक की तैयारी करते हैं, म्यूजिकल ब्रेक के बाद। और अब सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक सामेन, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। और हम बात कर रहे थे इससे पहले हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का किरदार। मेरा ताल्लुक FOPS से है, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है उनकी जानकारी के लिए आपको बताता चलूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर रहमतुल्ला असद, जो एवरकेयर हॉस्पिटल में एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब वेलकम बैक। हम आपसे पहले सवाल कर रहे थे प्रेपरेशन ऑफ द डोज के बारे में कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डोज की प्रेपरेशन किस तरह से करता है, तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डोज किस तरह से तैयार करता है? आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि दवाइयों की तैयारी किस तरह से करता है, उसमें आपने TPN का जिक्र किया, कीमोथेरेपी का जिक्र किया प्रीवियसली, लेकिन अभी मेरे जहन में जो सवाल बार बार आ रहा है कि किस तरह से करता है सही डोज की तैयारी,
2: जी सर,
1: उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स उसको देखने पड़ते हैं?
2: जी सर, मैं बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहले जब डॉक्टर एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है ना, तो फार्मासिस्ट का काम होता है उसकी उसका रिव्यू करना, वेरिफिकेशन करना कि डॉक्टर ने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है, हमने उसकी डोज देखनी है। हम उसके लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि मरीज का एज क्या है, मरीज का वेट कितना है, उसको उस दवाई की ज़रूरत है कि नहीं, फिर हम उसकी लैब वैल्यूज़ देखते हैं, उसके जिगर का फंक्शन, उसके गुर्दों का फंक्शन, उसका ब्लड वर्क सारा, वो हम सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम उसकी डोज कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कि ये डोज इतनी ठीक है कि नहीं है। अगर चेंज करना है तो हम डॉक्टर से फिर जाके बात करते हैं और उसको चेंज करवाते हैं और करेक्ट डोज ही डिस्पेंस करवाते हैं हमेशा।
1: अच्छा, ज्यादातर ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं जिसमें रीनल इम्पेयरमेंट के चांसेस भी होते हैं, जिसमें हम गुर्दे की खराबी की बात करते हैं या लिवर के खराबी की बात करते हैं, तो उसमें भी उसमें फार्मासिस्ट डोज किस तरह से तैयार करता है, उसमें क्या उसको?
2: सर मैं बताता हूँ आपको, इसमें जो होते हैं ना ओल्ड पेशेंट्स, उनके अंदर ज्यादा मसला होता है रीनल यानी कि गुर्दों का या जिगर का, तो उसके लिए लैब वैल्यूज होती हैं। आपने अगर कोई आपके घर में किसी ने इनका भी लैब टेस्ट कराया होगा, RFTs और LFTs, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, हम वो देखते हैं। उनके अंदर लैब्स को देखते हुए हम वेट बेस्ड डोजिंग करते हैं पेशेंट की। पहले वेट बेस्ड होती है, लाइक आप सपोज एक एंटीबायोटिक है वैंकोमाइसिन, ठीक है, उसकी डोज जाती है 15 से 20 mg/kg। अब ये है नॉर्मल पेशेंट के अंदर जिसमें उसका किडनी ठीक काम कर रही है। एक पेशेंट है जिसकी किडनी कॉम्प्रोमाइज है, अब उसमें क्या होता है, डोजिंग हम उस तक करेंगे जैसे 10 to 15 mg/kg, लेकिन उसको हम पेरेंट पे रिड्यूस कर देंगे उसके किडनी फंक्शन को मद्देनजर रखते हुए। पहले ही पेशेंट को जा रही थी दिन में 3 बार, किडनी फंक्शन को देखते हुए हमने उसको दिन में 1 बार कर दिया, दिन में 2 बार कर दिया।
1: ओके,
2: तो इस तरह हम उसको डोज रिडक्शन कहते हैं।
1: ओके,
2: वो हम
1: ओके,
2: कर
1: ओके,
2: देते हैं
1: ताकि लिवर के ऊपर या किडनी के ऊपर लोड कम पड़े।
2: बिल्कुल। और इसी तरह सर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर भी डोजिंग का बहुत ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि उनके बॉडी अभी डेवलप हो रही होती है, फंक्शंस प्रॉपर नहीं होते, जिगर के गुर्दे बन रहे होते हैं अभी, मतलब फंक्शन अपना डेवलप कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी डोजिंग जो होती है ना वो हम डिफरेंट रखते हैं। जैसे मैं आपको इसमें भी अगर एग्जांपल दूं, बड़ों के अंदर पैरासिटामोल हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं यहाँ पे।
1: सही।
2: पैरासिटामोल हम बड़ों में देते हैं 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम।
1: ओके।
2: लेकिन बच्चों में ऐसे नहीं दे सकते हम।
1: सही।
2: बच्चों की डोज जाती है 10 से 15 mg/kg/dose, ठीक है।
1: okay.
2: छोटे बच्चों में इस तरह होती है डोजिंग, वेट बेस्ड कि कितने किलो का बच्चा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर वो डोज बन जाती है उसकी।
1: ओके ओके ओके, डॉक्टर साहब ये तो हमें समझ आ गई बड़ी अच्छे तरीके से। मुझे बताइएगा कि क्या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का इमरजेंसी में कोई रोल है?
2: जी सर बिल्कुल, इमरजेंसी में भी रोल होता है। हमारा काम होता है कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना, और स्पेशली इन द केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कार्डिक इमरजेंसी हो गई है या पॉइजन इमरजेंसी हो गई है, तो हमारा काम होता है कि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हो और हम बताएं कि इसकी करेक्ट डोज क्या होगी इस इमरजेंसी के अंदर और किस चीज़ में डाइल्यूट करके देना है हमने। और अगर कोई पॉइजन वाला केस आता है हमारे पास तो हमने उनको ये बताना होता है कि इसकी एंटीडोट क्या होगी, हमारे पास होनी चाहिए वो अवेलेबल ऑल द टाइम। तो ऐसे रोल्स होते हैं इमरजेंसी के अंदर फार्मासिस्ट के।
1: अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं डॉक्टर साहब के उसमें दवाइयों के मुज़र असरात जिसको हम कहते हैं आम अल्फाज में हम कहते हैं दवाइयों के मुज़र असरात में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, क्या वो मुज़र असरात जिनसे हैं जो दवाई के और होते हैं क्या उसके ऊपर नज़र भी रखता है और वो पेशेंट को आगे फर्दर इन्फॉर्म भी करता है कि आप जो मेडिकेशन इस वक्त ले रहे हैं तो उनसे आपको ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसके ऊपर फार्मासिस्ट का क्या रोल है, क्या मुझे आप एक दो एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे ताकि हमारे जो सामीन हैं उनको समझ आ सके कि फार्मासिस्ट से राबता करना आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन कितना ज़रूरी है, कि डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है वो फार्मासिस्ट उसको किस तरह से समझा सकता है।
2: जी सर बिल्कुल, हम जैसे कि मैंने बताया कि फार्मासिस्ट एक मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं तो मेडिसिन से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना उसका काम है और ये हम करते भी हैं। और जैसे आपने बताया कि आप पूछ रहे थे कि मुज़र असरात पे हम बात कर रहे थे कि मुज़र असरात जो है सर वो हम पेशेंट को मशवरा देते हैं और एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि ये साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और आपने उसके ये प्रिकॉशन करने। और जैसे अगर मैं बताऊँ आपको एक ड्रग है एंटीबायोटिक, उससे पेशेंट को एलर्जी फर्स्ट टाइम लगा है उसको और उसको रैश हो गया स्किन पे, बुखार हो गया, एलर्जी के सिम्टम्स आ गए हैं, तो ये उसका एक मुज़र असर है उसका। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम फौरन एंटीबायोटिक स्टॉप करेंगे, उसको उसकी एलर्जी के लिए कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, एंटीहिस्टामिन टाइप या स्टेरॉइड देंगे और हम एंटीबायोटिक क्लास ही चेंज कर देंगे, फार्मासिस्ट एक न्यू सजेशन देगा डॉक्टर को।
1: सही।
2: सेकेंडली अगर आप एक और एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, ब्लड पतला करने की एक दवाई होती है उसे हम हेपरिन कहते हैं,
1: सही,
2: अक्सर हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस के लिए और पी प्रोफाइलैक्सिस के लिए। तो उसे क्या होता है, खून पतला होता है, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा कि खून बहुत ज़्यादा पतला हो गया।
1: सही।
2: ठीक है, वो क्या करता है आपके प्लेटलेट्स को कम कर देता है और प्लेटलेट इतने कम हो जाते हैं कि वो आपके ब्लीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फार्मासिस्ट उसको होल्ड करवा देगा, डॉक्टर को बताएगा कि डॉक्टर साहब इसका ये साइड इफेक्ट नोन एडवर्स इफेक्ट है और पेशेंट सारे सिम्टम्स शो कर रहे हैं, इसको होल्ड कर दें। तो फिर वो उसको होल्ड कर देते हैं अनटिल पेशेंट नॉर्मल रिकवर नहीं हो जाता।
1: ओके, इट मींस के डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को एस्टेब्लिश करने में फार्मासिस्ट का बड़ा अच्छा रोल है।
2: जी सर।
1: ओके, कोई शुगर के मरीजों के लिए कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जिसमें फार्मासिस्ट का कोई रोल हो उसको एडवर्स इफेक्ट बताने में, लाइक इंसुलिन के हवाले से?
2: सर इंसुलिन के हम उनको बताते हैं कि यूज़ किस तरह करना है, क्योंकि डॉक्टर इंसुलिन लिख तो देता है लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये इस्तेमाल कैसे करनी है, इसको रखना कहाँ पे है, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं। अब मरीज़ आता है हमारे पास, हम उसको बताते हैं कि आपने किस किस हिस्से पे जिल्द में कैसे टीका लगाना है, फिर लोगों को ये नहीं पता होता कि इंसुलिन से यूनिट किस तरह निकालने हैं, कितने यूनिट निकालने हैं, मैं अगर इंसुलिन सिरिंज में इंसुलिन डाल रहा हूँ तो कितने यूनिट डल रही है। तो हम सारा कुछ लोगों को बताते हैं। और इंसुलिन एक ऐसा ड्रग है कि अगर आप इसको एरर में इस्तेमाल कर, लाइक जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, जो कि एक बहुत सिवियर कंडीशन है जिसमें आपके ब्लड का शुगर बहुत ही कम हो जाता है।
1: बहुत खूब डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि जिस तरह से मैं दूसरी अमराज के बारे में पूछ रहा हूँ तो कैंसर का मर्ज़ आपको पता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसकी रिपोर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या कैंसर के इलाज में फार्मासिस्ट का कोई रोल है, कोई किरदार है?
2: जी सर बिल्कुल, कैंसर का इलाज सर इस तरह होता है कि एक पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हो गया, अब इंटरनेशनली कुछ गाइडलाइंस बनी हुई हैं जो हमने फॉलो करनी होती है कैंसर ट्रीटमेंट की, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या बोन मैरो का कैंसर होता है तो उसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, लीन प्रोटोकॉल, बीम प्रोटोकॉल, हर प्रोटोकॉल के अंदर एक सेट ऑफ एंटी कैंसर मेडिसिन होती हैं। ठीक है, तो फार्मासिस्ट क्या करता है, फार्मासिस्ट काम होता है सबसे पहले वेरिफिकेशन, जहाँ दवाई होगी वहाँ फार्मासिस्ट ने वेरीफाई करना है कि क्या ये दवाई ठीक है, क्या ये दवाई सही डोज है और इस पेशेंट को जानी चाहिए, तो वो सब हम देखते हुए हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, डोज एडजस्टमेंट करते हैं, फिर उसकी प्रिपरेशन करते हैं और मॉनिटरिंग में किरदार अदा करते हैं।
1: ओके डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अभी तक बहुत अच्छी हमें मालूमात फराहम कर रहे हैं। और अभी हम मिलते हैं छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के बाद, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 जोसीपी की दुनिया। और आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द हॉस्पिटल। एंड हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रहमतुल्ला असद, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं एवर केयर हॉस्पिटल में। वेलकम बैक डॉक्टर साहब।
4: थैंक यू सर, वेलकम।
3: आपके साथ बड़ी सहर हासिल गुफ्तगु हो रही है, तो आप मुझे काइंडली ये बताएं कि फार्मासिस्ट जिनसा है वो मरीज की मेडिकल हिस्ट्री या मेडिसिन हिस्ट्री देखता है?
4: जी सर बिल्कुल, फार्मासिस्ट का एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट मोस्टली जो होते हैं वो पेशेंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, पूरी प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं कि ताकि उनके एक बिग पिक्चर मिल जाए कि पेशेंट को चल क्या रहा है, पेशेंट को हुआ क्या, उसकी प्रीवियस मेडिसिन क्या थी, होम मेडिकेशन जो थी, या अगर वो कहीं दाखिल हुआ था तो वहाँ पर क्या उसको इलाज हो रहा था, फिर उसकी करंट मेडिकेशन क्या चल रही है, उसकी लैब्स क्या हैं, और ताकि ये सारी चीज़ें देखते हुए वो ये देखे कि कोई उसकी चीज़ मिस तो नहीं हो रही, कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा दो ड्रग्स का आपस में, या कोई ऐसी चीज़ जो उसने डॉक्टर को चेंज करवानी हो या मॉडिफाई करनी हो। इसमें सर मैं एक एग्जांपल कोट करूँगा, हमारे साथ रिसेंटली केस आया था आईसीयू के अंदर, एक पेशेंट था एपिलेप्सी का।
3: ओके
4: ठीक है, अब डॉक्टर्स ने उसकी हिस्ट्री नोट की लेकिन वो ये चीज़ उससे पूछना भूल गए कि वो उसके लिए क्या मेडिसिन लेता था। लिखा हुआ था कि एपिलेप्सी थी और उसके लिए डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन नहीं ऐड की। अब यहाँ पे आता है फार्मासिस्ट के रोल में, जब बता रहा हूँ आपको पेशेंट हिस्ट्री का। अब मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी कि उसको एपिलेप्सी थी, मैंने उसके करंट मेडिकेशंस देखी कि उसमें कोई एपिलेप्सी की दवाई ऐड नहीं हुई हुई, फिर मैंने उसकी प्रीवियस मेडिकेशन जो घर की उसकी होम मेडिकेशन थी वो उसके अटेंडेंट से पूछी, सारा मैंने लिंक किया सब कुछ, तो पता लगा उसको एक ड्रग है लेविट्रास्टैम, जो हम एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के लिए देते हैं मरीजों को,
3: बिल्कुल
4: वो उसकी मिस हुई हुई थी। तो वो भी मैंने डॉक्टर को बताया, फिर हमने वो ऐड की और उसकी कंटिन्यू की रेगुलर थेरेपी, और अगर ये मिस हो जाती तो क्या पता उसे क्या क्या हो सकता था पेशेंट को। तो ये एक इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री की और फार्मासिस्ट की यहाँ पे।
3: ओके, इट मींस के डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जोनसा है, फार्मासिस्ट जोनसा है हॉस्पिटल में, पेशेंट की हिस्ट्री लिए बगैर उसका रोल मुकम्मल नहीं होता।
4: जी सर
3: ठीक है, आप यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या फार्मासिस्ट के बगैर इलाज किस तरह से मुतासिर हो सकता है? एक एग्जांपल तो आपने बता दी कि हॉस्पिटल के अंदर जो है ना इस तरह से मुतासिर होता है, जैसे आपने एपिलेप्सी की वाली एक एग्जांपल दी, तो उसके अलावा आप मुझे बताएं कि और कौन कौन से चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप समझते हैं कि फार्मासिस्ट का बड़ा अच्छा रोल हो सकता है, और अगर ना हो तो उसका इलाज मुतासिर होगा।
4: अब सर देखें, एक फार्मासिस्ट जैसे कि मेडिसिन एक्सपर्ट, मैं बार बार बताता हूँ, अगर एक एक्सपर्ट नहीं होगा वहाँ पे तो मेडिसिन का इरेशनल यूज़ होगा, लोग देखेंगे नहीं, लोगों को पता नहीं होगा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि उन्हें एजुकेट करने वाला कोई बंदा नहीं होगा, फार्मासिस्ट नहीं होगा, फिर एडवर्स रिएक्शंस बढ़ जाएंगे, एरर्स बढ़ जाएंगे, और इस तरह जो क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अगर इसके हम एग्जांपल दें तो आप इस तरह समझ लें कि एक पेशेंट है वो एक मेडिसिन से एलर्जिक सिम्टम्स एग्जिबिट कर रहा है।
3: ओके,
4: अब डॉक्टर को ये नहीं पता कि ये एलर्जी या सिम्टम्स उसको इस मेडिसिन से आ रहे हैं, ये बताना था फार्मासिस्ट ने उसको। अब डॉक्टर उस इंडिकेशन के लिए उसको एक नई मेडिसिन चला रहा है, बजाय वो पिछली मेडिसिन को बंद करता और वो सिम्टम खुद ही चले जाते, वो उसके लिए एक और मेडिसिन चला रहा है, उससे कुछ होगा उसके लिए और चला देगा, तो इस चक्कर में पेशेंट की तबीयत मजीद से मजीद ख़राब होती जाएगी सही होने की बजाय।
3: ओके, इट मींस के डॉक्टर और फार्मासिस्ट का कोलैबोरेशन जो सी है
4: बहुत जरूरी है,
3: फॉर द प्रिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, तो उसके बाद ही मरीज सेहतयाब हो सकता है।
4: सर नॉट जस्ट डॉक्टर और फार्मासिस्ट, हमारे उस्ताद हमें पढ़ाते थे ट्राइएज, नर्स, फार्मासिस्ट और डॉक्टर।
3: ओके,
4: ये तीन साथ चलते हैं तो मरीज की केयर जो होती है वो अच्छी होती है।
3: ओके ओके ओके, बिकॉज ये तीनों हेल्थ केयर के कस्टोडियन।
4: बिल्कुल सर बिल्कुल।
3: ओके ओके ओके ओके, अभी डॉक्टर साहब अभी ये बताएं कि क्या किन किन महारतों की ज़रूरत होती है फार्मासिस्ट के लिए, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि हमारा फोकस ज़्यादातर हॉस्पिटल फार्मेसी पे ही है, तो यहाँ पर किन किन महारतों की ज़रूरत होती है?
4: सर, सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जैसे फार्माकोलॉजी है, आपने मेडिसिन है, क्योंकि हमारा काम ज्यादा मेडिसिन से होता है, तो उसका नॉलेज जो है ना,
3: ऐसा तो नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है, आप मुझे सामने कह रहे हैं कि फार्माकोलॉजी बेहतर होना चाहिए।
4: नहीं सर, हमने आपसे पढ़ी है। तो सर, लेकिन फार्माकोलॉजी एक बहुत की रोल प्ले करती है इसके अंदर। फिर उसके बाद आपको डोज कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन मैथ होता है, वो आना चाहिए आपको कि हमने कैसे डोज कैलकुलेट करनी है पेशेंट की, लैब से देख के सारे फॉर्मूले होते हैं वो आपको आने चाहिए। फिर सबसे ज़रूरी जो होता है ना, वो कम्युनिकेशन है। अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन वीक है, तभी भी आप अपना पैगाम कन्वे नहीं कर पाते और डॉक्टर आपकी बात नहीं समझता। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आपका नॉलेज थोड़ा वीक है, तो आप फिर भी उसको प्रिवेंट कर सकते, लगा आपको पता है एक चीज़, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो पेशेंट हार्म होने से पहले। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं है, तो फिर ये भी एक फ्लॉ होता है फार्मासिस्ट का।
3: मींस के कम्युनिकेशन बिटवीन अमंग दी फार्मा डॉक्टर एंड द नर्सेस एंड पर्टिकुलरली विद दी पेशेंट एज वेल।
4: सर, पेशेंट से हम कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उसको हम इतनी टेक्निकल डिटेल नहीं बता सकते।
3: ओके,
4: बस उसको हम ये बताते हैं कि आपने जैसे एक एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन, आपने ये दूध के साथ नहीं लेनी,
3: ठीक है।
4: उससे क्या होगा कि थेरेपी खराब हो जाएगी, आपकी दवाई असर नहीं करेगी। लाइक उनको हम इस टाइप की काउंसलिंग करते हैं
3: कि एडीआर इस ड्रग के ये आ सकते हैं, साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, बस इस हद तक पेशेंट को आप बताते हैं। ओके, बाकी डोजिंग उसकी
4: कैलकुलेशन वो डॉक्टर फार्मासिस्ट के साथ होती है जी।
3: वेल, अच्छा रहमतुल्ला साहब, मुझे आप सिर्फ ये बताएं लास्ट में कि इसका पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या है, एज ए, मैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ, इसका पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है?
4: सर, इसका बहुत रोशन स्कोप है, बहुत फ्यूचर अच्छा है इसका। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि फार्मासिस्ट मार्केट में आ रहे हैं, अब जैसे सर आप जैसे उस्ताद उन्हें पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ट्रेंड फार्मासिस्ट निकल रहे हैं, तो वो अपना रोल संभाल रहे हैं मार्केट में आके, और उनके किरदार से, मतलब उनके इस रोल संभालने से एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट इदारों के अंदर, और वो इनकी हायरिंग को नोट करेंगे। लाइक डॉक्टर्स भी अब कहते हैं कि जी हम फार्मासिस्ट के बगैर दवाई नहीं देंगे, तो अब यहाँ से देख लें कि वो इम्पोर्टेंस उसकी कितनी बढ़ रही है फार्मासिस्ट की। फिर इसी वजह से फिर मज़ीद हायरिंग्स होंगी और एक बड़ा अच्छा एक स्कोप बन रहा है इस प्रोफेशन का, और इंशाल्लाह आगे और भी बेहतरी आएगी इसके अंदर। और आप देखें अगर के जितने भी पाकिस्तान के अच्छे हॉस्पिटल्स हैं लाहौर के, पंजाब के, वहाँ पे एक डेडिकेटेड फार्मेसी सर्विसेज डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो रहा है, अब जहाँ नहीं था वहाँ भी हो रहा है अब।
3: मसलन कौन कौन से डॉक्टर साहब?
4: सर मैं बताऊँ आपको, PKLI है, एवर केयर है, शौकत खानम है, और इसके अलावा इंडस हॉस्पिटल है, जहाँ पहले डॉक्टर्स है, नेशनल है। लाइक आप देखें अब जो भी अच्छा केयर प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पर फार्मेसी डिपार्टमेंट है, डेडिकेटेड फार्मेसी सर्विसेज डिपार्टमेंट है।
3: ओके। अच्छा, ये जो फार्मेसी करने के बाद लोगों का जो रुझान है वो हॉस्पिटल फार्मेसी की तरफ रिलेटिवली कम होता है, आपने शायद आपने नोट ना किया हो, मैं बहजियत उस्ताद बात करूँ, शौक ज़रूर ज़ाहिर करते हैं और लेकिन वहाँ उस मिराज तक नहीं पहुँच सकते, एक साल दो साल करने के बाद वो छोड़ देते हैं वहाँ से कि हम दूसरी किसी फील्ड में चले जाते हैं फार्मेसी की, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या जो तालिब इल्म है या जो प्रोफेशनल है वो काम से भाग रहा होता है या स्टडीज़ से भाग रहा होता है, तो आप क्या समझते हैं कि कंटिन्यूस स्टडीज़ भी ज़रूरी हैं?
4: सर बिल्कुल, आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है करंट जो प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस आ रही होती हैं, और हॉस्पिटल की फील्ड सर ऐसी है कि आपने सारी ज़िंदगी पढ़ते रहना है, ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि मैंने इतना पढ़ लिया तो बस अब बहुत हो गया, ऐसा नहीं होता, आप सारी ज़िंदगी स्टूडेंट रहते हैं। और जहाँ तक रुझान है बच्चों का, तो सर हमारी अगर मैं कहूँ हॉस्पिटल के अलावा अगर आप फील्ड्स देखें ना, तो यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी स्लो है, हो सकता है बच्चे जो होते हैं वो इस चीज़ को देखते हुए एक साल दो साल लगा के भाग जाते हैं, लेकिन सर जो एम करके जो पैशन के साथ आता है इस फील्ड के अंदर वो सर नहीं जाता। लाइक मैं हूँ, मैं डे वन से हॉस्पिटल में हूँ और अभी तक मुझे 5 साल हो गए अलहमदिल्ला मार्केट में, मैं आज तक हॉस्पिटल में ही काम कर रहा हूँ, यहीं पे एक्सेल कर रहा हूँ।
3: डॉक्टर साहब, आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि आप आने वाले जो फार्मासिस्ट हैं, हमारी लॉट है, उसको क्या नसीहत करना चाहेंगे एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट?
4: सर एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मैंने सर यही नसीहत करूंगा कि आपके पास जो फार्मडी में टाइम होता है उसको वेस्ट ना करें, अपना नॉलेज जो है ना वो इक्विप करें, जो आपके टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ें, और जो नहीं पढ़ाते वो भी पढ़ें, ठीक है। आपके पास बुक्स होती हैं, आपके पास इंटरनेट जैसी फैसिलिटी, आपके पास गाइडलाइंस हैं, एक क्लिक दूर सब कुछ है आपके। बजाय आप मार्केट में आके, मेरी तरह जब मैं मार्केट में आया, मैंने देखा कि यार हमारी थ्योरी में और हमारी प्रोफेशन में तो बड़ा गैप था। वो मुझे अब जाके रियलाइज़ होता है, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी उस टाइम ग्रेजुएट होने के बाद, जो कि मैं पहले कर सकता था अगर मैंने ज़रा फोकस किया होता, ध्यान दिया होता। तो मेरे अपने जूनियर से, अपने यंग बच्चों से, फार्मासिस्ट से यही रिक्वेस्ट होगी या उनको एडवाइस होगी कि वो अपने टाइम ज़ाया ना करें, अपने प्रोफेशन पे फोकस करें, अपने नॉलेज पे फोकस करें और अपने स्किल्स बढ़ाएं फार्माकोलॉजी के, कैलकुलेशन के, ज़ूटिक्स के, और डिसाइड करें कि उन्होंने आगे किस फील्ड में जाना है। अगर आपने हॉस्पिटल में जाना है तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। अगर आपने इंडस्ट्री में जाना है तो आप देखें आपने कंपोजिशन, फार्मास्यूटिक्स, उसकी फार्मुलेशन, व्हाटएवर जो भी होता है उस पर फोकस करना है आपने। अगर आपने मार्केटिंग में आना है तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें, नेटवर्किंग करें। अगर आपने एकेडमिया में आना तो आप देखें आपने एमफिल किस में करना है, पीएचडी किस में करनी है, ठीक है। अपने मेंटर्स बनाएं, अपने आइडल्स बनाएं, उनको फॉलो करें, उनसे सीखें।
3: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि लास्ट में कि स्टडीज़ को फोकस करना चाहिए। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहा करता होता हूँ कि आपके पास वीकेंड्स आते हैं उनको यूटिलाइज़ करें, उनको अपनी डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए यूटिलाइज़ करें। आपके पास समर आता है, आप उसको अपनी जो प्रीवियस सेमेस्टर की जो डेफिशिएंसीज हैं, जो आपने क्लासरूम में पढ़ा या सीखा, उसको आप एक्यूप्ट करें, उसको आप पॉलिश करें, उसके लिए उसमें फर्दर अपनी जान मारें ताकि आपका समर यूटिलाइज हो जाए, ताकि आप फील्ड में जाके आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी किस्म की। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत सहर हासिल गुफ्तगू हुई। आप सामीन के लिए, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आज का हमारा टॉपिक था रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द हॉस्पिटल फार्मेसी, एंड हमारे साथ गेस्ट थे डॉक्टर रहमतुल्ला असद, जो एवर केयर हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का किरदार निभा रहे हैं काफ़ी अर्से से। बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब आपका कि आपने बहुत अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू रहेगी और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा भी मदऊ करेंगे ताकि आप हमारे सामीन के लिए अच्छा सा कोई नॉलेज शेयर कर सकें, उनके साथ अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर कर सकें। और अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर ना आ जाएं, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
1: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: इस सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: इफ यू वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड टू द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ योर कंट्री, स्टे कनेक्टेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111 1877 पर राब्ता कीजिए।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya. Ki duniya, ki duniya.
2: Do patte patjhad ke pedon se utre the, phir utne ki chahat mein us sehraon se guzre. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। ज़रा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
3: आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।